0: जीएन दिव्य तेजा सागिराजू एमएस ओबीजी गायनिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन
1: डॉक्टर पीडीएम स्वरूप एमडी जनरल मेडिसिन
0: डॉक्टर लक्ष्मी चंदना यूरोलॉजिस्ट यूरो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जी फणींद्र गिरिनाथ एमडी पीडियाट्रिक्स
1: डॉक्टर एस पूर्णचंद एमडी इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट इमरजेंसी क्रिटिकल केयर टीम
2: डॉक्टर पी प्रवीण एमएस ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर माचवरपु महेश एमबीबीएस डीएनबी एमएस न्यूरो सर्जरी ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन डॉक्टर एन माधुरी MBBS, MS, MPH Surgical Oncology, FI, MES Cancer Surgeon,
3: Vinayaka Multi Speciality Hospital, JP Road, Bhimavaram.